0: ये सभी बेटी सोनी पुंग बलाव
1: ये मलिया बेटी आजीव पुंग पुस बलाव
2: ये नरहर बेटी जबरी
0: सिंग मोंगला एंड अक्षिक
3: मौई दरिया
0: मौई नूं मौई